0: I beat on the skin. Her image like ha. Damage? I dust skin kick ayo. Ouch. Her new kick. To kick up it. Super white dry collagen beauty cream. Jehme ahin. Chawar and kick with you. I kojic acid formulation jo jald ke restore kare image nami ki lock kare ek chamrang ki khubi jald ma fine lines and jhirang ki ghat kare and wrinkles ki ghat kare sirf 2 minutes mein jald ki banaye naram mulayam and dry unhi ka zarurat super white beauty serum jahan se har katre sa chehre ki milit par bhi ki khubsurti har har bhi raho beautiful super white rice collagen beauty cream a product of aksa cosmetics
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघड़ायूं भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 and 0312-1401-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 313-086-3163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सजाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजादे बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजादे बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-3879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर वारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
4: जी हा, 3135 5576।
5: FM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई खां लॉन्ग मार्च गैर मशरू तौर खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिलावल भुट्टो जरदारी जो केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी सां फोन ते राबतो। फैसल करीम बिलावल भुट्टो जरदारी खे केपीके में दहशतगर्दी वारनि वाक्यनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई खां लॉन्ग मार्च गैर मशरू तौर ख़त्म करण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त केपीके हुकूमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग वारी सूरतहाल खे संभालण में पंहिंजो किरदार अदा करे। चार अक्टूबर ते लॉन्ग मार्च लगी मरवत खां शुरू थींदो। पंज मार्च ते कोहाट में तरसंदो, जंहिं बाद पिशावर में दाखिल थींदो। केपीके जे सूबाई वज़ीर शफीजान जो ऐलान। केपीके जे वरे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी लॉन्ग मार्च लाइ फंड मुहिम शुरू कंदे चयो आहे त चंदो ॾींदड़ सिधी रीत बि चंदो जमा कराए सघनि था।
1: इंसाफ फिर एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है। कुछ दिन पहले खबरें हुई कि बागी पीटीआई इमरान खान से कुछ हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स की अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या सुनिश्चित है।
2: आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आई हैव मेड इट रिपीटेडली क्लियर, पॉलिटिक्स इज फॉर द पोलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट आर मेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द पोलिटिकल पार्टीज। तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट डू दैट। एज फार एज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, इसका लीगल या पूरा स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अभी बस कम टू तल यू बोर्ड। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ा कलंक का टीका है, वो जिंदा हो या मुर्दा वो हिन्दुस्तान के मुंह पे लगा हो। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जमहूरियत है, रियासत है तो आप और मैं है।
0: पाक फौज जो सियासत सां को भी ताल्लुक न आहे। सियासत करण सियासी जमातन जो कम आहे। फौज कंहिं भी सियासी मामले जो जवाब न ॾींदी। पाक फौज तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पहिरीं बि वाज़े करे चुका आहियूं त सियासत सियासी जमातन जो कम आहे। ॻाल्हियूं बि सियासी ऐं जमातन हुकूमतनि विच में थींदियूं आहिनि। मुल्की सलामतीअ ते को बि ठाह न थींदो। रियासत हूंदी त सियासत बि हूंदी, रियासत हूंदी त जमहूरियत बि हूंदी, रियासत हूंदी त तव्हां ऐं असां बि हूंदासीं।
3: You can see the Superman, please, find me. कारनामे बताएं आपके क्या क्या करते रहे हैं। तो दी मूसा, ये है जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ ऑफ एस एस जी, हु हैज बिन चुनाव वाली कोर्ट की तरह जाइए जो सेकंड वाली सेकंड सेकंड नो दिस इज द मिनियन मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा। चुनाव कोर्ट ने इनको दी इसकी डेड बॉडी, इस डेड बॉडी वॉज रिकवर्ड बाय चुनाव कोर्ट एज पर देम ऑन 30th September। तो आई वुड रिक्वेस्ट माई डियर फ्रेंड हवलदार आसिफ टू टेल सम।
4: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कटक तहसील पीनी देव पर रहने वाला हूँ। कल पिछले टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की थी कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया, आप किधर हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हूँ, मैं जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मुझे इंडियन नंबर से कॉल आने शुरू हुई, उन्होंने मेरे से जाती डाटा पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं, कौन है, उसको क्या लगते हैं। मैं वो नंबर बुला करता हूँ, फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई नहीं से पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको झूठी कार्रवाई में कश्मीर में शहीद कर दिया है। मुझे तो बहुत बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है, मैं अभी घर में बैठा हूँ कि किधर उन्होंने मुझे शहीद कर दिया। ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने लगाया, मैं इसकी जमा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज,
8: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
10: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
9: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
10: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
10: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरिएंट सबके

0: डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
1: सुपर वाइट।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे। डॉक्टर अल्टेशलस अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रख हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायती। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
3: किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125-25786।
3: जी हा, 2315-25-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
0: अवां अठन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट्स क्रीम हेयर कलर पहिंजे पसंदीदा रंग सा पहिंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐं वधिक स्टाइलिश। पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट्स क्रीम हेयर कलर सा पहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजे खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज़ में एतमाद।

Okay, ji, welcome back once again. Aap sun rahe hain Zindagi Gulzar, is sponsored by Super White, by Aksa Cosmetics aur Super White ke products, jo ki bahut khoobsurat bana rahe hain aapko. Last link mein hum wapas aa chuke hain ji, aur iske sath sath aap log mujhe calls kar sakte hain ji. Call karne ke liye hamara live calling number hai 03000113488, aur iske alawa 8881 pe aap log mujhe messages kar sakte hain, aur iske alawa aap log comment kar sakte hain hamare Facebook पेज के ऊपर. और इसके अलावा जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल रहा है इस खूबसूरत से सफर में, और ये खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम जली, ठीक है, पेट्रोलियम जली इनकी आती है जी कोकाओ बटर के फ्लेवर में, रोज के फ्लेवर में आती है जी, और रोज के साथ साथ लेमन के जो है फ्लेवर में आती है. आप इसको यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए, तमाम अनमर्द हजरात और खवातीन के लिए जो कि ऑयली स्किन वाले हैं और ऑयली स्किन है उनकी, तो इसमें मौजूद है जी एवोकाडो की बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को ऑयल मजीद उस पे आने से रोक देते हैं, और जब ऑयल आपकी स्किन का कम हो जाएगा इसके इस्तेमाल से तो डेफिनेटली आपकी जो पिंपल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स और एक्ने का इश्यू उन्हीं लोगों को होता है जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है. ऑयली है तो सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम यूज करें, प्लस उसके साथ सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश भी जरूर यूज करें, ठीक है, और यूज करने के बाद पहले ही 3 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको हेल्दी स्किन मिलेगी, और साथ में आप इसके सुपर वाइट का बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो बूस्टर ऐड करेंगे सुपर वाइट वालों का सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में, ठीक है, और अगर आप चाहें तो मजीद इसको क्या कर सकते हैं, मजीद इसको और इन्हेंस कर सकते हैं सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम से. सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम जो कि आपको मिल जाती है, और सारे ही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं इजी मार्केट से, और सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम जो कि आप सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसका बूस्टर ऐड करेंगे, ठीक है, बूस्टर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, ठीक है, बूस्टर या सिरम आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, एक अच्छा सा एक्ने गो फॉर्मूला तैयार है आप लोगों के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है जी साथ साथ, इसके बारे में भी मैं आपको बताती जाऊं. सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम जो कि आपकी स्किन को सेफली क्लींस करती है और आपके हेयर्स को रिमूव करती है, ठीक है जी, आप अपने इसको हाथों पे यूज कर सकते हैं जी, हाथों के जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, लेग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां जहां आपके अनवांटेड हेयर हैं आप वहां पे स्किन पे लगा के अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं जी इजीली, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि हेयर्स को रिमूव करेगी, और इसके साथ साथ ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो लेके आए ग्लो, लेके आए खूबसूरती, लेके आए इन तमाम खूबसूरत प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने कमाल के और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, साथ साथ सुपर वाइट का राइस ग्लो फेस वॉश, कोजिक एसिड कॉलेजन मौजूद है, ये सारी चीजें इतनी कमाल की चीजें, इतने कमाल के इन्ग्रीडियंट्स में मौजूद है कि आपकी स्किन को हेल्दी बना देंगे, आपको कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट्स वो वाहिद प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन को मोर हेल्दियर बनाएंगे, ठीक है जी, तो सुपर वाइट राइस फेस वॉश जिसमें कोलेजन भी मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो फेस वॉश आप लोग ये वाला यूज करें, और यूज करने के बाद आपको मिलेगा वो ग्लो जो कि पहले कभी किसी
اور فیس واش سے نہیں ملا ہوگا. تو اگر ایک اچھے فیس واش کی تلاش میں ہیں تو یہ والا یوز کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے فیس واشز کی رینج ہے جی, سپر وائٹ والوں کی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وائٹمن سی فیس واش بھی ان کا آتا ہے. خاص طور پہ وہ تمام تر لوگ جن کی اسکن پہ بلیمشز لائک بہت ساری پگمنٹیشن اور چھائیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو اسکن ٹون ہے وہ ایون نہیں رہتی ہے اور ان کی اسکن پہ چھائیاں ہونے کی وجہ سے ان کا کمپلیکشن کہیں سے ڈارک, کہیں سے بہت زیادہ وائٹ, یا کہیں سے بہت زیادہ ڈارک, تو اس طرح کی سچویشن کچھ فیس کے اوپر بن جاتی ہے. اور اگر فیس کے اوپر ہی ایسی چیز سارا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی اسکن کا بہت سارا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اچھے پروڈکٹس کا انتخاب کرنا ہے, اور انتخاب کرنا ہے آپ لوگوں نے سپر وائٹ وائٹامن سی کا. اگر خاص طور پہ آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر چھائیاں موجود ہیں تو وائٹامن سی کی بیوٹی کریم آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. سپر وائٹ کی وائٹامن سی بیوٹی کریم اور ساتھ میں اس کا فیس واش پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. تو آج ہی مارکیٹ جا کے بائی کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ہر جگہ سے یہ پروڈکٹس ایزیلی مل جاتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کامنٹس کی طرف بھی آتے ہیں جی, کامنٹس کے ساتھ ساتھ میسجز کی طرف بھی آئیں گے. اور کامنٹ ہمیں کر دیا ہے جی نظر محمد بھٹی نے. نظر محمد بھٹی کہتے ہیں السلام علیکم آر جی رخسار, آپ کا نام بہت اچھا ہے, نائس پروگرام فرام مچیاری. تھینک یو سو مچ نظر محمد بھٹی. اور رشید خوسو ہمیں سن رہے ہیں,

0: सनाउल्ला जरवार हमें सुन रहे हैं, सनाउल्ला जरवार थैंक यू सो मच. और फैसल अहमद दानी हमें सुन रहे हैं, कामरान अली के बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ साथ हम कॉल्स भी लेंगे. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: ये जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल हम पहली सुनते हैं.
0: ओके, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय
1: सुपर वाइज.
0: वेरी गुड, यानी कि बहुत शौक और बहुत गौर से सुन रहे हैं, इससे पता चलता है.
1: जी बिल्कुल, नंबर नहीं लग रहा था, आज लगा इतने सालों में.
0: बिल्कुल जी, नंबर नहीं लगता और यही तो वाहिद मसला है कि नंबर नहीं लगता. और मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि सेम सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड. तो फाइनली आज आपकी कॉल लग गई है. मुझे बताएं कि सुपर वाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे आप?
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम और छाइयां है मेरे को. इंशाल्लाह ताला आपका गौर से प्रोग्राम सुन रहा था. जी जी इंशाल्लाह.
0: चलिए जी, जरूर यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद जरूर बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स मिले हैं आपको. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मोलाई का गाना सुनाएं.
0: मोलाई का गाना हम कल सुनाएंगे क्योंकि आज जुम्मा है. ठीक है?
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: चलो ठीक है.
0: आपको हम कलाम सुनवाते हैं. अच्छा सा
1: कसीदा सुनाए कोई?
0: चले कसीदा सुनाते हैं आपको. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें.
1: थैंक यू.
0: ओके, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू. और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर लेंगे जी. टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा कॉलर्स ले लूं. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: बाजी रुखसार मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, फ्रॉम कंदरा से.
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी.
0: ओके, वेलकम टू द शो. मुझे बताएं कौन सा शो है ये?
2: जिंदगी गुलजार है बाजी.
0: जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय
2: वो पता नहीं होगी,
0: पता नहीं है. चले पता ये भी चल जाएगा. मुझे बताएं, मैं जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो यूज करेंगे?
2: इंशाल्लाह यूज करेंगे.
0: कौन से है वो? नाम तो आपको पता नहीं है.
2: नाम तो भूल गया हूँ.
0: सुपर वाइट के प्रोडक्ट है.
2: कौन से?
0: हाँ, सुपर वाइट, वेरी गुड. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने यूज करना है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा यूज करना है.
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
0: ठीक हो गया जी. कुछ और जी जी,
2: सुन रहे हैं सबको सलाम बाजी, आपको टीम को सलाम.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज जी. और ये कुछ कलर्स और साथ साथ हम चलते हैं आगे. और एक खूबसूरत सा कसीदा हम प्ले करते हैं जी. और इसी के साथ हम भी आगे चलते हैं.

0: माण्हुनि जो इलाज कयो। मीडिया चवंदी जहाज अवां चवंदा त 2 लख घर ठाहिया। मीडिया चवंदी जहाज अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया। मीडिया चवंदी जहाज मूं उज़मा खे चयो अवां जहाज खे विसारे छॾियो। माण्हू कॾहिं बि जहाज न विसारींदा। उन्हनि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझ बि न मिलंदो। केके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। हिदक वारे इलाइक़े में गुजी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारजियुनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। सकरण में जसकम नारी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज जी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकतल रैली में वॾे अंग में औरतूं शरीक। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध धरती हज़ारे साल खां क़ाइमु आहे, विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। लाड़काणे में छठी जी तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली लॻण सबब नौजवान मारिजी विया, 2 ॼणा जख़्मी। ॻोठ कादिर बख़्श भुट्टो में हवाई फायरिंग दौरान गोली लॻण सबब राहिल चनो मारिजी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस वाके वारी हंधि पहुची नौजवान जो मरण ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल पहुचायो। सजावल में गर्लसाई स्कूल जे क्लास रूम जी छित जा चापुड़ किरण लॻा ऐं 3 शागिर्दियाणियूं ज़ख़्मी। मैट्रिक जी क्लास रूम जी छित जा चापड़ किरण सबब शागिर्दियाणी निदा सोणी ऐं सलीमा ज़ख़्मी थियूं। ज़ख़्मी शागिर्दियाणियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। शहरियुनि पारां स्कूल जी मरम्मत कराइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
12: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230।
13: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
14: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
11: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहुं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनक की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां ज़रूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

हुकूमत ऐं पीटीआई विच में ॻाल्हियूं जारी। स्पीकर आया सादिक जी सारत हेठि थींदड़ ॻाल्हियुनि में ॿिन्ही धुरियुनि जा नुमाइंदा शरीक। हुकूमती वफ़द में घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, राणा सनाउल्ला, अमीर मकाम तारिक फज़ुल चौधरी, तलाल चौधरी, श्री रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ ज़खरानी शामिल आहिनि। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गुहर राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद केसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल आहिनि। पीटीआई जे ऐलानियल लंगमार्च समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। इस्पताली हूंदी आहे। बानीअ जो चेकअप थी वियो, डॉक्टर्स खेस फिट करार ॾिनो आहे। वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनाउल्ला जो बयान। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ुल चौधरी चयो त केपी के हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़त्म करणो पवंदो। हुकूमत जी 27 ते बि तयारी हुई, 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमिल आहे। पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। हमला चिल ॾियारींदड़ करार, फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। परडे खाते चयो आहे त हुरमिन शरीफ़नि जे तकदुस इबादत गुज़ारनि ऐं पांदड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे। गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़त्म कयो वञे। हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ पंहिंजी अवाम जी हिफ़ाज़त, पांदड़नि जे तहफ़ लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। ख़िते में जटादार अमुन जी क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं। अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवी खे बिजली फराहम कंदड़ गिर्द ते हुसियन जे हमले जी मज़म्मत। हमला मुसलमान लाइ चिल ॾियारींदड़ करार, हुसियन गिर्द ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सऊदी हुकमरान कूड़ा इल्ज़ाम बदिरां यमन ते जारी जारहियत बंदि कनि।

के मरियम नवाज जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु न मिलंदो। केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्स जो ऑपरेशन दहशतगर्द मारिजी वियो। इंदक वारे इलाइक़े में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारिजनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्स जूं ख़बर वक़्त खां वायूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्द पीडीएफ वफ़द जे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत ॾिनी। हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल ॻाल्हि ज़रिए ई निकिरी सघे थो। जमायत इस्लामी केपीके में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी।

0: सकरन में जसकमनारी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकल रैलीअ में वॾे अंग में औरतूं शरीक थियूं। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध धरती हज़ारे साल खां क़ाइमु आहे, विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। कराची में सिंध सेक्रेटरियट इम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जे मुतालबनि जी मंथ लाइ एहतजाज। मुलाज़िमनि मौजूदु ॿियनि सूबनि में मुलाज़िमनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस मिली रहियो आहे, सिंध में छो न मिली रहियो आहे? मुलाज़िमनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस ॾिनो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहुं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सिटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: छा तवान जोड़न जी

0: सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो, छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3241-230।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
4: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

चौधरी, शरीर रहमान, नवीद कमर, एजाज जखरानी शामिल। पीटीआई वक्त में बैरिस्टर गोहर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद केसर, आमिर डोगर ए हलीम आदिल शेख शामिल हुआ। पीटीआई जे ऐलान लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ मामलन ते गालियूं थियूं। इस्पताल ई हूंदी आहे, पानी जो चेकअप थी वियो, डॉक्टर्स खेस फिट करार डिनो आहे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई हाणे लॉन्ग मार्च जो सर वापसि वठे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त केपी के हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़त्म करणो पवंदो। हुकूमत जे 27 ते बि तयारी हुई, 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमिल आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त लॉन्ग मार्च ऐं ॻाल्हियूं गॾोगॾु हलंदियूं। पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत हमला चिर ॾियारींदड़ करार। फौरी तौर रोकण जो मुतालबो, पर ॾेह खाते चयो आहे त हुरमिन शरीफ़नि जे तक़दुस इबादत गुज़ारनि न पांदड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे। गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़त्म कयो वञे। हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़, पंहिंजी अवाम जी हिफ़ाज़त, पांदड़नि जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। ख़िते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं।

0: अरब मुल्कन पारां मदीने में मस्जिद नबवी खे बिजली फराहम कंदड़ गेट ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत हमला मुसलमान लाइ अचे ॾियारींदड़ करार। हुसैन गेट ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सऊदी हुकमरान कूड़ा इल्ज़ाम मरण बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि। अमेरिका पारां ईरान जे बहरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करण जो फ़ैसिलो। 2000 में ऐं 3 जंगी बरदार बहरी बेड़ा मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो। अमेरिकी उहिदेदार मूजिब USS थर्डोन रोज़वेल्ट ऐं USS मैकन आइल्ड विच ओभर में मुक़ररु कया पिया वञनि, जंहिं बाद विच ओभर में अमेरिका जी ताक़त वधीक। वॾे वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फाल करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी तारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास। सैद मुराद अली शाह पारां शागिर्दनि जी दाख़िला वधाइण लाइ भरपूर मुहिम हलाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो आहे त अपग्रेड थियल स्कूलनि में उस्ताद शागिर्द ऐं तालीमी सहूलियतूं पहिरें ई ॾींहं मौजूदु हुजनि। रुगो स्कूल तामीर करणु मक़सदु नाहे, ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे।
1: बाकी सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको कि मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया वो कहेगा जहाज, आपको कि मैंने 2 लाख घरों दर्ज बनाए वो कहेगा जहाज, आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई वो कहेगा जहाज। और हमारे उसमें कहते हैं कि लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं, तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग जहाज को भूल जाएंगे, लोग कभी जहाज को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाए जहाज के और कोई बात नहीं करेंगे।
0: पंजाब जी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज बार बार जहाज जो जिक्र करण ते मीडिया सां नाराज़। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे मरियम नवाज चयो, तव्हां चओ मूं 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो, मीडिया चवंदी जहाज, अवां चवंदा 2 लख घर ठाहिया, मीडिया चवंदी जहाज, अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया, मीडिया चवंदी जहाज। मोज़मा खे चयो, अवां जहाज खे विसारे छॾियो, माण्हू कॾहिं बि जहाज खे न विसारींदा, हुननि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु न मिलंदो। केपीके जे इलाइक़े

0: उत्तर वजीरिस्तान में फोर्स जो ऑपरेशन सत खारजी दहशत गर्द मारजी वाया इंदकवारे इलाके में गुजी इतलाते ऑपरेशन दौरान सत खारजिन के जहनम बेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्स जो खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दी जे मुकमल खात्मे लाइ पुरअज़म आहे। पीटीआई वफ़द जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत डि॒नी। हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए ई निकिरी सघे थो। जमायत इस्लामी केपीके में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसीअ जी हिमायत न कंदी। जाम नवाज़ अली में गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल नौजवान जो झंग मां गोलियूं लॻल लाश हथायो आहे। बिराणी पुलिस वाके वारी हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। मक़तूल नौजवान जे घोट नसीम मरीवासी फराजपुर गुल हसन मरी तौर सुञाणप कई वई आहे। वारसनि पारां वाके जी शफ़ाफ़ जांच कराए जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। सकरण में जसकम नारी तहरीक पारां सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकतल रैलीअ में वॾे अंग में औरतूं शरीक थियूं। अॻवाणनि चयो त सिंध धरती हज़ारे साल खां क़ाइम आहे, विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा आवां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
8: जी हाँ 3135525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर पीओ किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई और औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
4: जी हां 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
3: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: शामिल हो अस्पताल ई हूंदी आहे बानीअ जो चेकअप थी वियो डॉक्टर्स खेस फिट करार डि॒नो आहे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई हाणे लांग मार्च जो सॾु वापसि वठे वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त केपी के हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़तम करणो पवंदो हुकूमत जी 27 ते बि तयारी हुई 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमिल आहे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोअर चयो आहे त लांग मार्च ऐं ॻाल्हियुनि खे गॾोगॾु हलंदियूं पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत हमला चिर ॾियारींदड़ करार फौरी तौर रोकण जो मुतालबो परडे॒ खाते चयो आहे त उर्मिन शरीफ़नि जे तक़दस इबादत गुज़ारनि ऐं पांधेरनि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे उर्मिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़ पंहिंजे अवाम जी हिफ़ाज़त पांधेरनि जी हिफ़ाज़त लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे खिते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवीअ खे बिजली फराहम कंदड़ गिर्ड ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत हमला मुसलमाननि लाइ चिर ॾियारींदड़ करार हुसैन गिर्ड ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि सऊदी हुकुमरान कूड़ा इल्ज़ाम बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि अमेरिका पारां ईरान जे बहिरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करण जो फ़ैसिलो 2003 जंगी बरदार बहिरी बेड़ा मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो अमेरिकी उहिदेदार मूजिब यूएसएस रोज़वेल्ट ऐं यूएसएस मैकनआल्ड विच ओभर में मुक़ररु कया पिया वञनि जंहिं बाद विच ओभर में अमेरिका जी ताक़त वधीक मुस्तकम थींदी वॾे वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फाल करण जी हिदायत वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास सैद मुराद अली शाह पारां शागिर्दनि जी दाख़िला वधाइण लाइ भरपूर मुहिम हलाइण जी हिदायत वॾे वज़ीर चयो आहे त अपग्रेड थियल स्कूलनि में उस्ताद शागिर्द ऐं तालीमी सहूलियतूं पहिरें ई ॾींहं मौजूदु हुजनि रुगो स्कूल तामीर करणु मक़सदु नाहे ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे
5: सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आप तो कि मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया वो कहेगा दिखाज आप तो कि मैंने 2 लाख घर दर्ज बनाए वो कहेगा दिखाज आप कही कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाएंगे वो कहेगा दिखाज और हमारे उसमें कहते हैं कि वो कुछ देर बाद भूल जाते तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग जहाज को भूल जाएंगे लोग कभी जहाज को भूलेंगे नहीं क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाई जहाज के और कोई बात नहीं है
4: पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज बार बार जहाज जो जिक्र करण ते मीडिया सां नाराज़ लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे मरियम नवाज चयो आहे तव्हां चओ मूं 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो मीडिया चवंदी जहाज अवां चवंदा 2 लख घर ठाहिया मीडिया चवंदी जहाज अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया मीडिया चवंदी जहाज मोज़मा खे चयो अवां जहाज खे विसारे छॾियो माण्हू कॾहिं बि जहाज खे न विसारींदा हुननि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु बि न मिलंदो केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारजी दहशतगर्द माजी विया आइदक वारे इलाइक़े में ॻुझी इतलाह ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जूं खैबर पख़्तूनख़्वा में फितन अख़वारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवायूं जारी आहिनि सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दी जे मुकमिल ख़ात्मे लाइ पुरज़म पीटीआई वफ़द जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत डि॒नी हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए ई निकिरी सघे थो जमायत इस्लामी केपीके में गवर्नर राज या एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी

0: वाई विरानी पुलिस वाके वारी हंध पहुंची, लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। मकतूल नौजवान जे घोट नसीर मरीवासी फराजपुर गुलासन मरी तौर सुञाणप कई वई। वारसन पारां वाके जी शफाफ जांच कराए जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। सकरन में जसकमधारी तहरीक पारां सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ़ एहतजाजी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकतल रैली में वॾे अंग में औरतूं शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध धरती हज़ारनि सालनि खां क़ाइम आहे, विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। कराची में सिंध सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज। मुलाज़मनि मौजूदु ॿियनि सूबनि में मुलाज़मनि खे सेक्रेटरी अलाउंस मिली रहियो आहे, सिंध में छो न मिली रहियो आहे? मुलाज़मनि खे सेक्रेटरी अलाउंस ॾिनो वञे, सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कंबर में शहरनि जे वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस ख़िलाफ़ रैली। शहरनि रैली कढी भुट्टो चौक ते एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मौजूदु पुलिस जी नाहली सबबि कंबर शाहदादकोट ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। पुलिस मंशात ऐं जुआ जे अॾनि तां मंत्रियूं उगाड़ण में मसरूफ़ आहे। आईजी सिंध नोटिस वठी अमुन अमान बहाल कराए। खैरपुर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड नॉर्मल पिण कई वञाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा नोतकाणतली, वधीक 247-3041-230।
11: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
12: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे खुश और बेरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोच कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन ईहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
4: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अरब मुल्कन पारां मदीने में मस्जिद नबी के बिजली फराहम कंदड़ ग्रिड ते हुसियन जे हमले की मज़म्मत। हमला मुसलमानन लाइ चिड़ डियारींदड़ करार। हुसियन गेट ते हमले की तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सऊदी हुकमरान कूड़ा इल्ज़ाम वण बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि।

सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको तो मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया, वो कहेगा जहाज। आपको तो मैंने 2 लाख घरों दर्द बनाए, वो कहेगा जहाज। आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई, वो कहेगा जहाज। और मेरे भाव से बात की जाती है तो मेरा भाव नहीं, जो पंजाब का भाव है, मैं उसके खाते लाइन नहीं ले जाऊंगी। वो भाव यही रहेगा कि अभी मुझे सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिल जाए जो मोबाइल का एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट की इंप्रूवमेंट के ऊपर उन्होंने मुझे नाम दिया एनवायरमेंट वॉरियर का। तो अब मोटरबाइक को बैठे तो नहीं जा सकते। और दूसरे सुबह ने मेरा 10 या 11 का भाव है, दूसरे सुबह ने 16 बिलियन का हेलीकॉप्टर लिया, लेकिन उनका नाम नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं।

0: पंजाब जी वजीर आला मरियम नवाज जहाज जो जिक्र करते मीडिया से नाराज। लाहौर में तकरीब खिताब कदे मरियम नवाज चयो त रुगो जहाज से गालियों थी रही आन जहाज लाइवेंट न खड़ी वेंदस पडे भी वंजड़ो हों मोटरसाइकिल से न वेंदस लैया डेरा गाजी खान भी मोटरसाइकिल से न वेंदस अवां चओ मूं ब करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो मीडिया चवंदी जहाज अवां चवंदा त ब लख घर ठाहिया मीडिया चवंदी जहाज हुननि खे मरियम नवाज जे पंज सालनि जी हुकूमत में जहाज खां सवाइ कुझु न मिलंदो। केपी जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन सत ख़ारजी दहशतगर्द पहुची विया। ईदक वारे इलाइक़े में गुझे इतला ते ऑपरेशन दौरान सत ख़ारजीन खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितनतुल फ़ारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरअज़म। पीटीआई एफ जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाकात। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत ॾिनी। हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल गालियुनि ज़रिए ई निकिरी सघे थो। जमायत इस्लामी केपी में गवर्नर आज या एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी। जाम नवाज अली में गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल नौजवान जो जंग मां गोलियूं लॻल लाशत। बबराणी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। मक़तूल नौजवान जे घोट नसीर मरी वासी फराज पुट गुल हसन मरी तौरु सुञाणप कई वई। वारिसन पारां वाके जी शफ़ाफ़ जांच कराए जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैन कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252586।
5: जी हाँ 3135525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे.

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के लोग बता दो यार, हमको देखने का अंदाज का दो यार, किस तरह जीते हो ये लोग बता दो यार।
1: वाह जबरदस्त,
0: के नाम से वाकिफ न जाओ, गर्द के नाम से वाकिफ न जाओ, उन गले को सोचा दर हमको का दो यार, हमको अंदाज का दो यार, किस तरह
1: यार। किसके नाम करना चाहते हैं अभी गाना? देखिए मैंने आपका गाना लगा दिया है,
2: अगर आपके नाम कर दिया मैंने।
1: हाय थैंक यू सागर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू। हमारे साथ बहुत सुरीले से सागर भाई, और सागर भाई को हम वही गाना सुनाएंगे जो कि वो गा रहे थे, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: यारो क्या बात है जनाब, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समाजों की नजर किया। और सागर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेते हैं जनाब, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है, शो की कॉल लेते हैं और आपको अपना नंबर बताते चलें जनाब। हमारा नंबर है 03000113488। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल शो भी हो सकते हैं। नजीर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा समर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमें बड़े गौर के साथ सुन रहे हैं। इसके अलावा जनाब हम जाते हैं अपने मैसेजेस की जानेब। मैसेज में हमें इनामुद्दीन जमाली बलोच ने हमें मैसेज किया, जनाब कहते हैं अशफाक आपका शो बहुत अच्छा है, हम बड़े गौर के साथ सुनते हैं और बड़े शौक के साथ सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आप हमारे शो को बड़े गौर के साथ और बड़े शौक के साथ सुनते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी जनाब कि आप हमें इतने गौर से सुनते हैं और बड़ा मजा आता है आपको हमारे शो को सुनने में। तो जनाब अब हम लेते हैं शो की एक और कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो जी जनाब, लगता है इनको आवाज हमारी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं है, कभी कभी कॉल में डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम चाहते हैं कि ये कॉल की डिस्टर्बेंस सिर्फ कॉल तक रहे, आप तक ना है। अगर आपकी कॉल नहीं लगती तो आप डिसार्ट मत हो, आप स्माइल कीजिए और दोबारा से नंबर मिलाइए। तो जनाब आपके जैसे आपके भाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जनाब कॉल मिला रहे होते हैं, तो कभी कभी नंबर भी बिजी होता है और कभी कभी नंबर नहीं भी लगता है, तो ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है जनाब, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। और आप ट्राई कीजिए, आपका नंबर जरूर लगेगा इंशाल्लाह ताला और आप हमारे साथ जरूर इस शो में शिरकत करेंगे और हमारे साथ इस शो में आप एंजॉय भी करेंगे। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, लेकिन कॉल लेने से पहले आपको नंबर मैं जरूर बताते चलूं, 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनाब अब फाइनली हम देते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो ओए होए, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे प्यारा भाग केर सा सबनी सा गड जी जी जी केर सा सबनी सा गड भाऊ
1: गरीब नवाज चावरी साईं, गरीब नवाज चावरी,
0: गरीब नवाज चावरी साहब कितना कॉल किया था असा के
1: अरे सकर शहर को सर
0: माशाल्लाह। गरीब नवाज भाई केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, कम कार किए तो लेता जो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त या सुठी गाल है तमाम मौज मस्ती कयो
1: न गोला वता जो इंतजार का इंतजार शुरू को निकाली हो क्या के मन भास आ रास्ते पे मिले जो क्या चाल थे।
0: हां बिल्कुल हाने कचरी थी भैया ता के ता सा गड मुजी मुके भी तमाम घणो भलो लगयो है। गरीब नवाज भा मां मुमताज मलाई मां मुमताज मलाई प्ले कयो है, कें जे नाले से करना चाहयो जी जी जी जी थैंक यू सो मच गरीब नवाज टावरी साहब ऐं शौकत टावरी खे असांजा सलाम ॾिजो, उहो असांजो तमामु घणो पुराणो कॉलर आहे पर अलाए किथे गुम थी वियो अलाई लाइन ते आणियसि पर हाणे असां दुआ करे सघूं था। इनशाला इनशाला थैंक यू सो मच गरीब नवाज भाई, थैंक यू। जी जनाब रफीक जदोई की फरमाइश पर हम प्ले करें एक बहुत प्यारा सा गाना सिख अहिड़ी शया, इस गाने को सुनिए, हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो GFM 88 नेटवर्क पर। आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: शेरी रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज जखराणी खे पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गोहर राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी तो नुमाइंदा शामिल होंगे।
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते
3: रहे। असल ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर सुभाणे मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त उमेद आहे त सूरत हाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोजिशन लीडर चयो त असां पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾे, ॿीहर ॻाल्हियूं सुभाणे थींदियूं। पीपल्स पार्टी पीटीआई खां हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदड़ पीपल्स पार्टी टीम में शामिल सेनेटर शेरी रहमान चयो त लॉन्ग मार्च जी तारीख़ वधाइण या मुलतवी करण सां मसलो हल न थींदो। पीटीआई लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़त्म करे, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरत हाल इंतिहाई ख़राब आहे, कॾहिं बि हिकु फर्द लाइ लॉन्ग मार्च नाहे थींदो, कोशिश हूंदी त सुभाणे ॻाल्हियूं कंहिं नतीजे ते पहुचनि।

पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत, हमला चिड़ ॾियारींदड़ करार, फौरी तौर रोकण जो बि मुतालबो। परडे॒ही खाते चयो आहे त हरमैन शरीफ़नि जे तक़दस, इबादत गाहुनि ऐं पांधेड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे, ग़ैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे। हरमैन शरीफ़नि जी तहफ़ुज़, पंहिंजी आवाम जी हिफ़ाज़त, पांधेड़नि जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं। अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवी सलाहु वसलम खे बिजली फराहम कंदड़ ग्रिड ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत, हमला मुसलमाननि लाइ चिड़ ॾियारींदड़ करार। हुसैन ग्रिड ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सऊदी हुकुमरान कूड़ा इल्ज़ाम मरण बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2318-2525-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: गहरा पहुंच जाएगी, हमारी दोस्ती हो जाएगी
1: जी,
0: जब मैं आपके पांव निकालूंगा।
1: हाँ नहीं, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि, हाँ, जी
0: फिर आपको पता लगेगा कि कितने भी साठ बनती है, क्योंकि सौ तो सबको आता है।
1: हाँ
0: तो हमें कभी कभी कम भी हो जाता है,
1: सही,
0: और सीखने की सलाह कभी कभी हमें कम भी हो जाती है।
1: हाँ
0: और जहाँ पर हमें सीखना होता है वहाँ पर हम नहीं सीखते और ये कहते हैं यार छोड़ो ये फजूल काम है।
1: हाँ।
0: लेकिन आगे चलकर फिर हमें ये होता है कि यार क्या पता इसमें अगर हम थोड़ा सा अप्लाई करते सीखते कुछ काम करते हैं तो काश आज हम आगे निकल जाते।
1: और मेरे फलसफी भाई, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आप में वो कौन सी आदतें हैं ये बताएं बस।
0: यार मुझे कोई आदत नहीं, मैं किसी काम का बंदा नहीं।
1: नहीं नहीं, आप बहुत काम के बंदे हैं। आप में जब मैंने बोला कि आप में टॉलरेंस है, बर्दाश्त है और सब्र है आप में।
0: हाँ सही, बर्दाश्त इतनी नहीं है।
1: नहीं है ना, अच्छा,
0: सब्र भी इतना नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं आज काम करूँ ना,
1: हाँ
0: वो आज हो जाएगा,
1: उसका नतीजा भी आज ही निकला है।
0: आज निकला है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है,
1: हाय हाय हाय, मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी।
0: लेकिन इशाक भाई जो अल्लाह के बस में, अल्लाह के हाथ में ना काम, हम कुछ भी करें वो अपने टाइम पर होंगे, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि हमारे काम जल्दी हो जाए।
1: हाँ।
0: और बड़ों का कहना है पता है क्या,
1: हाँ
0: कसर जाते रहे पूरा दस्त हो रहा है,
1: मना यो निभा गत। हाँ चलो कोई गल है, अला साईं का दुआ था क्यों यो निभाग जैमे भी आए मुझ समेत वो सब खत्म थी वने, आई असा आमे बर्दाश्त भी अच्छा वने अच्छी वने, आई असा मुस्तकिल मिजाज भी थी वनू, असा डिसिप्लिन भी थी वनू, ताकि असा के कामयाबियों जल्दी मिली सकन। ये न
0: बिल्कुल
1: अच्छा, मां तांजे हाने ज़हनी अजमाइश थोड़ो तांजी कदम यो बुधायो, हाने एकडो दोस्त आयो ने चयो मके फौजी सुमरो जो गानो बुधायो, तो वो केडो गानो बुधायो ने उने केडो चयो
0: उन्हीं जेको भी चयो पर मां तनम तुजे कूड़ में वाए।
1: अच्छा उनके मां एक्चुअली भूली वियो, मां विसरी वियो, तरी मां तांका पुछियो। हलो ठीक है, मां यू गानो बिल्कुल तो प्ले किया, फौजा सुमरो जी टे फरमाइश हो चुका है, एक तांजी एक अधे जी आई आ, हिकड़ी पहरे कॉल कई आ, वरी हिकड़ी असा के फरमाइश आई आ है, कहखा कहखा कहखा अब्दुल रजाक
0: तुम्हर पता है नहीं कि क्यों, लेकिन अभी अभी याद आ गया,
1: अभी भी भूल गए होती सारी बातों की बात, कोई बात।
0: हाँ बातों की बात, बात ये पता है कौन सी है,
1: नहीं
0: अक्सर लोग तमाम लोग जो भी दुनिया में फ्राइडे से दिन छुट्टी करते हैं आप काम करते हैं।
1: तो ये मेरा एंटरटेनमेंट का काम है, मैं काम मैं इसको काम समझते नहीं हूँ ना, मैं इसके इसको अपने दोस्तों के साथ गपशप समझता हूँ, आप सब मेरे दोस्त हैं, और
0: पूरी नहीं हुई भाई,
1: मैं आपकी बात समझ गया था ना, जड़ तक पहुँच गया था।
0: लेकिन सुने ना,
1: हाँ सुनाए ना,
0: लोग सारा हफ्ता काम करते हैं आप
1: जी जी,
0: जिस दिन लोग छुट्टी करते हैं आप आते हैं, ये भी अच्छा है कि आप छुट्टी करते हैं, लोग घर में बैठते हैं और आप आकर हमें एंटरटेनमेंट करते हैं,
1: exactly.
0: कभी कभी फरमाइश पूरी करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे से भाई, कितनी अच्छी बात की।
0: लेकिन अक्सर फरमाइश पूरी ना हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये फरमाइश प्रोग्राम नहीं है इसका भाई।
1: हाँ बिल्कुल, मैं वो तो मैं आपके आप लोगों के साथ गपशप करने आता हूँ, आपको एंटरटेन करने आता हूँ, और फरमाइशें भी पूरी कर देता हूँ, क्योंकि आपकी फरमाइशें मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है।
0: तुम लोगों का कहूँ ना चला ना,
1: हाँ हाँ।
0: मैं अगले हफ्ते आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, मैं यार मेरा क्यों नहीं जलाया।
1: नहीं नहीं, लड़ाई तो मेरा कोई भी लिसनर नहीं करता, सब मेरे प्यारे दोस्त हैं।
0: लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए ना ये, आप एक बंदा है, हम कितने लोग हैं आपके पीछे पीछे।
1: सही, रजिया फंस गई गुंडों में,
0: कोई कर रहा है, कोई काम कर रहा है,
1: रजिया फंस गई गुंडों में है, ऐसे ही है ना।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा इरफान, में गाना चलाने लगा हूँ, किसके नाम गाना चाहोगे?
0: सलाम सिस्टर मिसेस अली फौजिया फरजाना और सिस्टर दुआ खान राय सुमर मंताज सुमर हुसैन बकिस्तो हाफिज गुलाम अहमद सांबर लुकमान चाचा अब्दुल्ला बंगार बचल चंबानी नजीर मंगीर सिकंदर चंबानी जो भी सुन रहे हैं सबको इरफान अली टेबो की तरफ से बहुत सारा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से इरफान अली थेबो, और जब भी आते हैं जनाब रौनक लगा लेते हैं, बहुत अच्छे कॉलर हैं हमारे, और बहुत सेंसिटिव, बहुत समझदार और बहुत सेंसिबल हैं। थैंक यू सो मच इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे साथ हैं अब्दुल रजाक कुंभार, और एक और भाई की फरमाइश भी आई थी हमारे पास, फौजिया सुमरो की, इरफान ने भी की है, चलाते हैं फौजिया सुमरो थोड़ी देर में, लेकिन लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, अच जल्द मुडे जानियड़ा, मुखे रात भी निंड न आई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हेलो अदा, हेलो कौन हमारे साथ है? मुझे तो वहीद भाई की आवाज लगी, वहीद जतोई साहब की, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो वहीद भाई, क्या हो गया? एनीवे कोई बात नहीं है, अब हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। मेरे लिए वसीम चाय लेकर आया है, बहुत प्यारी सी चाय, थैंक यू वसीम। आप भी चाय पिए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने यारों के साथ, और जनाब हमारे शो में जरूर पार्टिसिपेट करें। अब बोरे मरी यहाँ से कॉल भी कर जी भाई, वहीद भाई जी अला छो आवाज भी कौन आई पर हाँ बैठा शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, कह रहे सब नहीं सागर
0: भाई,
1: सोना भाई कैसे हैं? सोना भाई इतनी अरसे बाद आए यार, खैर तो है?
0: बस क्या करें अशोक भाई, आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं, कभी कभी जो है दूसरों को देना चाहिए सर।
1: हाय क्या बात है जनाब, इतने समझदार मेरे सोना भाई, आप कैसे हैं और आपका गांव कैसा है, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं?
0: सब बिल्कुल ठीक है, और गाँव वाले सब मेरे दोस्त सब जो है सारे ठीक है, और सारे आपका शो सुनते हैं।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय भाई पी ली आपने?
0: सर अभी मैं पी रहा हूँ सर, आपका शो भी सुन रहा हूँ।
1: क्या बात है, चीयर्स कीजिए, मेरे हाथ में भी कप का चाय का कप है।
0: जी जी बिल्कुल, कॉल सुनी थी बड़ी लंबी थी, कोई लगता नहीं है, हमने प्रोग्राम कंटिन्यू सुनते हैं सर।
1: हाँ देख लें इरफान भाई, आपकी कॉल्स बहुत लंबी होती हैं, मैं अब बता रहा हूँ आपको, आपकी कॉल्स में सिर्फ 15 सेकंड तक लूंगा।
0: हम नहीं कह देंगे इरफान भाई को, क्योंकि हमारी बात से हो सके वो नाराज
1: नहीं होता। हाँ नहीं, इरफान बहुत अच्छा बंदा है, नाराज नहीं होता। जी जी नाराज नहीं होता, वो नाराज बिल्कुल नहीं होते इरफान भाई,
0: नाराज नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको जो है ना 2 मिनट काम चलानी चाहिए सर।
1: देखो सुनो इरफान, ठीक है ना आप? हूं आराम है, ओके। अच्छा सोना भाई ये बताओ, गाना चला रहा हूँ सुवज या सुमरो का, किसके नाम कहना चाहोगे आप?
0: हाँ सर, नाम सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को हम नाम कर लेंगे, ये सोजिया को, और उसके बाद जो भी दोस्त सुन रहे हैं अभी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो है, सबसे पहला हमारा जो दोस्त है अली गुलकतर है, वो आपको सुन रहा है, उसको ये गाना हम डेडिकेट कर लेंगे, उसके बाद में सलाह बच्ची चंपानी उसको डेडिकेट कर लेंगे, और अपना बंगवार है शिकारपुर से जमाल जिन भयो है उसको भी ये गाना हम डेडिकेट कर लेंगे, बाकी जो भी मेरे भाई और बहने सुन रहे हैं सबको, और हमारा सॉन्ग वही सर ने तेरा मुखड़ा हासिल जादू कर गया।
1: जी जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपका आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा सोना भाई।
0: बस सर कोशिश पूरी करेंगे तो हम भी आपको
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सोना भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे साथ ही बहुत ही प्यारे से सोना सोना भाई, और जनाब हम लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन चैन पे कौन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
1: सलाम सर। हाँ जी के
0: सॉरी
1: मोर जतोई बागर जिया का मोर भाग के हाल चाल तब
0: सर घर घर काम बुधायो
1: सफा सफा मजे में ये बुधायो कम कार किए चले ताजो
0: बहुत सारे शुक्रा माल पे
1: माशाल्लाह माशाल्लाह बागर जी वाला सब तकड़ा लगा प्यान
0: बिल्कुल खुश लगा पान
1: पान सही सही सही मोर भाई बुधायो फौजिया सुब्रो तो हलाया 4-5 फरमाइशों अच्छी चुको आइन कैं जे नाला करना चाहो
0: सर शेख अली खान जे नाले
1: जी जी
0: आए प्यारो भाई खान जी कोई
1: जी जी
0: सलाम मन जे कोई देखे फोटो दंगा मन कर अस्सलाम वालेकुम यार मदद
1: वालेकुम सलाम मौला अली मदद थैंक यू सो मच ओए थैंक यू सो मच मोर भाई पांचो खास ख्याल रखजो ओके जी जनाब मोर भाई हमारे साथ मौजूद थे और मोर भाई के बाद हम लेते हैं शो की एक और कॉल नहीं ले चले जनाब गाना चला देते हैं तो अब हम सोच रहे हैं कि हमें उस भाई ने कौन सा गाना कहा था लेकिन हमें मुझे लगता आ गया आ गया, गया। यही वाला गाना कहा था तो जनाब आज जल्दी मुझे जान ही अड़ा तो इस गाने को सुनिएगा अशफाक निहाज जी के साथ रहिएगा हम आपके साथ हैं रात के 7 बजे तक यानी कि शाम के 7 बजे तक तो इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जीएफएम 88 नेटवर्क से आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अशफाक निहाज जी।

0: 6:30 PM This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी

0: अरे न खुश्क ऐं बीरोन थी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिंद मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2 347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो,
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: जब हम घुसते हैं मोबाइल में तो जनाब एक घंटे बाद एहसास होता है कि 5 मिनट तो शायद किसी और दुनिया के थे। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, मसला इस्तेमाल का होता है। मोबाइल को अपनी जिंदगी का मालिक न बनाएं, उसे अपनी जिंदगी का एक टूल बनाएं। मालूमात के लिए इस्तेमाल करें, सीखने के लिए इस्तेमाल करें, कॉल के लिए इस्तेमाल करें, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हकीकी जिंदगी के लोगों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना करें कि मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा दिलचस्प दुनिया नजर आती है। कभी मोबाइल एक तरफ रखें और सामने बैठे इंसान से बात भी करें। यह भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो आप जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि बाद ऐसा होता है कि हम 4 दोस्त अगर इकट्ठे होते हैं या 5 दोस्त इकट्ठे होते हैं और ग्रुप, तो फिर हम सब वही मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जब हम 4 दोस्त या 5 दोस्त इकट्ठे बैठे हैं तो मोबाइल का क्या काम? मोबाइल को घर पे रख के क्यों नहीं आते, बंद करके क्यों नहीं आते? अगर हमने गपशप ही करनी है दोस्तों के साथ और गपशप के लिए जमा हुए हैं तो फिर मोबाइल में क्यों गुस्से हुए? तो वही गपशप हम मोबाइल पे कर लेते, इतने दूर सफर करने से भी बच जाते, दोस्तों के पास आने से भी बच जाते, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते। तो जनाब ये चीजें होती है जो कि बहुत मायने रखती है जिंदगी में। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे प्यारा मिठा भाग के रसा सबरी सा कर। अच्छा फकीर रजब अली साहब, क्या हाल चाल है तांजा?
1: दुआ अलग है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना कॉल किए तांखे केड़ गोठमाओ? कंडोवाण खां। जी जी फकीर साहब, यो बुधायो त तां जो कम कार के तोले?
1: बाबा कब का नान जे को तो मचान को ने बाबा आचन की वाली बाबा आते सारन जा।
0: अच्छा माने सुठो हले तो तां जो कम कार?
1: जी जी बस ना तमजोरी पा के आ रहे कि वो गुजारो करे तो इंसान।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह साईं जो करम, अल्लाह साईं जो करम माना जी एग्जैक्टली हर हाल में अल्लाह जी जो शुक्र अदा करण खपे,
1: शुक्र अदा करण
0: बिल्कुल।
1: बाकी आने दौर की हालात की सब ता के मालूम होता बाका है कि आने एयर वे छाग आयो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजा भाई बुधाए ता के जो प्रोग्राम के लगंदो आ
1: बेहतरीन देखो आप तो ना दी वाइस बली का तवा जो आवाज दो
0: अंका। थैंक यू
1: तरस ये का बाजी साहब मान के देखो आज मां बार बार रुके गया था प्रोग्राम में कुछ कमर्शियल घट
0: कमर्शियल घट हलायो अदा ये कमर्शियल सा दासा जी रोजी रोटी हलंदी आ।
1: बाबा साईं वो आ है पर देखो आज यार
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: है सी तो रखे।
0: जी जी जी
1: अंपायर भी का है सी तो रखे तो
0: एग्जैक्टली बिल्कुल। इन लाइ असा ब कलाक प्रोग्राम कंदा आयो तो जी असा भी तां के बुधण में एक वधिक चाहूं तां भी असा के बुधण में वधिक चो।
1: यो हकीकत आ पर आने जेको आ 40 45 मिनट के खबर समय जेको आ जो कलाक सवा वने तो वाली इन ने पर चल में बात में था तो
0: साईं तव्हां जी फरमाइश तव्हां जी सजेशन रखियनि ते इनशाला ताला ॾिसंदासीं इन मसले खे बि
1: असां ख़ुदि जेको आहे बाबा साहब ॻाल्हायो आहे मुंहिंजे भाउ हुन जे लाइ इज़त आहे।
0: जी जी बिल्कुल
1: असांजो प्यारो दोस्त आहे।
0: जी जी
1: पुराणो जेको आहे मां वासु साईं शाहबाज़ जेको आहे प्रोग्राम कंदो।
0: जी जी जी
1: पुराणा दोस्त जेको आहे मां लॻे हिकिड़ो जेको आहे जवान साहब प्रोग्राम राति जो
0: जी जी एग्जैक्टली सभु सभु असांजा सुठा आरजा आहिनि तव्हां तव्हां सभिनी जा दोस्त आहिनि भाउ आहिनि
1: तव्हां सभु असांजा आरजे जेके बि सुठा आहिनि।
0: जी जी
1: जे लाइ सभिनी खे ख़ुशि रखे पर हाणे हिकिड़ो मां कलाम ॿुधाइजे अॼु तव्हां एतिरो ॻाल्हायो।
0: हा कहिड़ो कलाम?
1: मंज़ूर सचीदारीअ जो को पुराणो कलाम ॿुधाए को सुठो जेको आहे।
0: हलो ठीक है मां इंशाल्लाह एंड में तांके बुधाया तो प्रोग्राम जे
1: एंड में बुधायो पर पोजी थोड़ो बटे में डीजो सब कुछ हले बटे में।
0: जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड में हलाय दूं तो हलंदो इंशाल्लाह। केड़ो आ कोई भी हलाया
1: खुशी वता करे मोजा भाव।
0: अच्छा मुख्तार सीधी जो केड़ो गानो हलाया मां?
1: जी बाबा
0: मुख्तार सीधी हलाया केड़ो भी गानो?
1: न मुख्तार सीधी न मंजूर
0: मंजूर सखिरानी सॉरी हा मंज़ूर सकरानी सर
1: जो पुराणो कलाम जेको पुराणा जेके कलाम अथसि उन मज़ा।
0: ओके ओके ओके इनशाला इनशाला कंहिंजे नाले करणु चाहे उहो गानो?
1: उहो साईं मां पंहिंजे प्यारे दोस्त जेको
0: आहे
1: रखे।
0: थैंक यू सर
1: पंहिंजो
0: अमीन अमीन अमीन
1: अमान पना।
0: جناب ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کالر رجب بھائی، ان کو سنواتے ہیں زبردست گانا، اس کے بعد منظور سکرانی پلے کریں گے، تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खिलंदा आ रहा हूँ बस।
1: बिल्कुल बिल्कुल नंढड़ो अर्ज़
0: जी जी। हेलो नंढड़ो अर्ज़ काॾे वियो? हेलो हेलो जी जी तव्हांजो नंढड़ो अर्ज़
1: मुंहिंजो रेडियो सेट ते आवाज़ सही नथो अचे।
0: अच्छा अलाए छो अदा तव्हांजो सेट ख़राब हूंदो?
1: अले यार को
0: नंढड़ो अर्ज़ कयो पिया।
1: जी जी
0: जी जी हुकुम
1: साईं। मां तो को तारे चब चकर आले छा
0: अलाए आई थिंक
1: हाँ नंढड़ो अर्ज जो चाचो चाहिए थी मंजूर सखरानी मंजूर सखरानी बुझे पर
0: जी जी
1: इश्क मशहूर
0: जै
1: दिनो सूर
0: मरिया से पूरी पूरी कोशिश तो क्या अगर मुझे न मिलो तो मैं तमाम घो पुरानो गानो हलए छदम ठीक है दादा
1: वो जाइए तो अचानक मौत थी वी तो मिली वही यार
0: हलो ठीक है इनशाला इनशाला पूरी पूरी कोशिश
1: दोस्त वन छो उबेद जतो जो रामतला हाजी रामतला गोठ जो
0: एग्जैक्टली जी जी
1: हा उन खे भी मां खोड़ सारा सलाम ॾींदुमि जे ॿुध थो त।
0: अच्छा सही आहे। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम।
1: हा उबेदला जतो खे रामतला जे ॻोठ खां तव्हांजो ॿुधंदो आहे उहो साफ़त सां बि कुझु जुड़ियल आहे।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी असांजो साफ़ी भाउ
1: आहे। हा ऐं तंहिंखां बाद में रफ़ीक जतो आहे मुंहिंजो भाटो इरफान जतो
0: हेलो जी जी
1: रमन जतोई आयाद रमन जतोई ॿियाज़ाही रमन जतो
0: सही
1: ॿुधनि था
0: जी जी
1: वफ़ा अब्दुल वहीद जतो पारां सॼे
0: वालेकुम असलम। तांजी आवाज थोड़ी थोड़ी कटजे पई पर कोई गाना है वही तो साहब तांजी कॉल पूरी कई। थैंक यू सो मच। पांजो खास ख्याल रखो असा के बीहर भी नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल कजो। सोना खान भाई जी फरमाइश मुखे नथी लगे त पूरो थींदी पर मां उनके गानो गाइंदो बुधाइंदो हलां पांजी आवाज में।

तेरा मुस्कुरा सी जी जनाब, अब आपको मेरी आवाज अच्छी लगी है या बहुत ज्यादा अच्छी लगी या फिर जरूर बताइएगा। सोना भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी जरूर फरमाइश पूरी करेंगे। लेते हैं शो की लास्ट लास्ट लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो जी जनाब, अब कोई बात नहीं है, कॉल की आवाज भी नहीं आ रही तो हम अपने शो को करते हैं वाइंड अप। और जनाब बिल्कुल दोस्तों देखिए ना कि देखते ही देखते हमारे आज के दो घंटे मुकम्मल होने को आ गए। आज हमने कामयाबी की बात की अपने शो में, खुशी की बात की, वक्त की बात की, रिश्तों की बात की और हंसी मजाक किया और दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी की जो शायद हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे काम आ सके। बस जाते जाते एक बात याद रखिएगा, जिंदगी मुख्तसर जरूर है लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। हर दिन एक नया मौका है, कल जो नहीं कर सके आज कोशिश करें, जो रिश्ता दूर हो गया उसे करीब करने की कोशिश करें, जो ख्वाब अधूरा रह गया उसे दोबारा याद करें और जो इंसान आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आज ही एक कदम बढ़ाएं। मैं था आपका अपना अशफाक नियाज़ी और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को दिल से जिए। आवाज जो दिलों को जोड़ दे, GFM 88 नेटवर्क सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंजॉय कीजिए मंजूर सुकरानी का बेहतरीन गाना। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए अल्लाह ने

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर

0: वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252576
8: जी हाँ 2315525786
5: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
2: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125257 86
6: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या

0: सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 03036638879 ऐं 03124001287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125257866।
1: जी हा, 3135525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सदा शहर सिंध जे निज़ारन ते लिखबो, मेहरान जे मौजुन किनारन ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारन ते लिखबो, हारन मजदूरन मोचारन ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारन ते लिखबो, मुहन जे दड़े जे आसारन ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारन ते लिखबो, ओ दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो, दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: लाइ आला सतही ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखण वारे अज़म जो भी वर्जाव पाकिस्तान जी दिफाई हक वारे अज़म जो भी तौसीक अफगानिस्तान मां जन्म वठंदड़ दहशतगर्दी खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयूं जारी रखण वारे अज़म जो भी वर्जाव कयो वियो दहशतगर्दन जी सहूलतकारी कंदड़ तालिबान क़यादत नतीजन जी ज़िम्मेवार करार दहशतगर्दन खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जी सारा नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम जे फलाह ते बदल हुकमरानी दहशतगर्दी ऐं ॾोहारनि जे गठजोड़ जो ख़ात्मो ऐं पुलिस जी सघ में वाद अंटर करार ॾिनो वियो ISPR मूजिब कंहिं बि बहाने सां इंतशार पखेड़ण या 9 मई जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण वारी कोशिश खे कानून मूजिब बिना कंहिं फ़र्क़ जे फ़ैसिले ते अंदाज़ में नाकाम बणायो वेंदो फोरम पारां पाक सऊदी ऐं तुर्की दिफ़ाई मुआदे जी आजियां कश्मीरनि जी इख़लाक़ी मदद जारी रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ कयो वियो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त क़ौम जी हिमायत सां फ़ौज मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी इलाक़ाई सालमियत ऐं क़ौमी सलामतीअ जी तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में

0: रासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़म, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252586।
3: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: के कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।